वेलकम है हजरत, भूल के गोले वो बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।